0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600 ਚੌਪ ਕਰਤੀ ਹੈ।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: डकैत साडे सारिआं दे अंदर होंदा है, मौका मिलदा है जो हाथ लगदा है ओह लुट लैंदा है।
2: सिर्फ फिल्म ही नहीं, ये है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
1: जदो एक जोकर तख्त ते बैंदा है तां ओह राजा नहीं बनदा, ओह पूरे राज नूं सर्कस मना लैंदा है।
2: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी 1674
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्ना ने वदिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालिया दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन
5: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME Advisor.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी ओए असीं लोरिए होने आ सियाने बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे जलाक बंदे दी असीं अख पढ़ लेने।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 ते 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
1: Bale bale bale.
4: Bale bale bale.

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ई है 8 साल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही भरोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: हाँ जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आईएमई एडवाइजर।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: डकैत तो साडे सारे दे अंदर होंदा है, मौका मिलदा है जो हाथ लगदा है वह लुट लैंदा है।
2: सिर्फ फिल्मी नहीं, ये है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
1: जदो एक जोकर तख्त पे बैठा है तो वो राजा नहीं बनता, वो पूरे राज में सर्कस मना लेता है।
2: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार। 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: रेडियो हांजी 1674 एम ते तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। अज शनिवार 8 अगस्त 2026 दे खबरनामे दी शुरुआत करदे हां। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज दे नाल शुरुआत। थाईलैंड तो पहली खबर, जिथे थाईलैंड दे राजधानी बैंकाक दे नाल पैंदे नानथांबुरी सूबे दे विच बैंकुआई जिले दे अंदर एक स्कूल दे विच गोलीबारी दी घटना सामने आई है। ऐसे शुक्रवार दे दरमियान हुई इस गोलीबारी दे विच घटो घट 7 लोकां दी मौत दी खबर सामने आई है। थाईलैंड दे सेहत मंत्रालय दे मुताबिक शक है कि स्कूल जाण तों पहलां इस विद्यार्थी ने अपने दादा दादी दा भी कतल कर दिता सी, क्योंकि उन्हां दोहां दीआं लाशां भी घर दे विचों बरामद हुईआं ने। थाईलैंड दे सेहत मंत्रालय ने दस्सिआ कि स्कूल दे विच होई गोलीबारी दे विच 5 अध्यापकां दी मौत हो गई है। शकी विद्यार्थी ने गोलीबारी करन तों बाद खुद जिस बंदूक दे नाल गोली मारी उस दे दादा दी सी, और उस तों पहलां एक स्कूल टीचर जिहड़े सी उन्हां नूं भी गोली मारी, और फिर थाईलैंड दे प्रधानमंत्री ने स्कूल दी इस घटना दी आलोचना कीती ते कहा कि यह बहुत बुरा होया, अजिहा नहीं होना चाहिदा सी, साडे देश दे विच अजिहा किवें हो सकदा। आम तौर दे उत्ते थाईलैंड नूं एक शांति पसंद मुल्क दे तौर दे उत्ते देखिया जांदा है। रॉयटर्स दी खबर दे मुताबिक हमलावर ने बाद दे विच खुद नूं भी गोली मार ली सी। नानथांबुरी सूबे दे विच पुलिस दी तरफ तों फिलहाल दस्सिया गया है कि यह विद्यार्थी 9वीं जमात दा दे विच पढ़दा सी, और थाईलैंड दे विच 9वीं जमात दे विद्यार्थी दी उम्र आम तौर दे उत्ते 14 साल हो जांदी है। पुलिस ने पुष्टि कीती है कि हमलावर दी वी मौत इस हमले दे विच हो चुकी है। उथे जिवें कल दे दिन तुहाडे नाल खबरां सांझियां कर रहे सी, जिस चीज़ दा एक किस्म दे नाल शक जताया जा रहा सी आखिरकार उह होया। साउदी अरब दे मक्का शहर दे विच शुक्रवार दे दिन साउदी अरब तुर्की ते पाकिस्तान दे दरमियान अहम त्रिकोणा समझौता हो गया, रखिया समझौता इस नूं दस्या जा रहा है। पाकिस्तान दे विदेश मंत्रालय दे बयान मुताबिक तिना देशां दे नेतावां ने साउदी अरब दे मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की दे राष्ट्रपति रेचप तैयब अरदवान ते पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक सम्मेलन दे दौरान इस समझौते दे उत्ते हस्ताखर किते। समझौते दे तहत तिना देशां दे किसे भी एक मैंबर देश दे उत्ते हमले नूं बाकी दोहां देशां दे उत्ते

0: आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हम दो दो लोकेशन पे मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षर ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टनविच भी तुहाड़ी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: यह तुहाडी मर्दमशुमारी नू पूरा करन दा समा है। मंगलवार 11 अगस्त 2026 नू ऑस्ट्रेलिया विच हर किसे नू गिनिया जावेगा। इस विच नागरिक, पक्के निवासी, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, अस्थाई वीजा तारक अते सैलानी शामिल हन। तुसी ऑनलाइन कागजी फॉर्म ते जां जे तुहानू लोड़ पैंदी है तां मदद दे नाल हिस्सा लै सकते हो। सहायता विभिन्न भाषावां विच उपलब्ध है अते इस दी पेशकश ऑनलाइन अते फोन राही कीती जांदी है। अते याद रखो, मर्दमशुमारी दी रात नू तुहाडे घर विच ठहरण वाले हर किसे नू शामिल करो जिस विच बच्चे अते पुराने शामिल हन। मर्दमशुमारी ऑस्ट्रेलिया दी तस्वीर खिंचण विच मदद करदी है। इह स्कूलां, भाईचारक सेवावां, सेहत संभाल अते आवाजाई वर्गियां चीजां वास्ते योजनाबंदी बारे दसदी है। जद तुसी हिस्सा लैंदे हो तां तुसी इह यकीनी बनाउण विच मदद करदे हो कि तुहाडी भाषा, सभ्याचार अते भाईचारे दी प्रतिनिधता कीती जांदी है। 2026 दी मर्दमशुमारी हर जवाब मायने रखदा है। www.census.abs.gov.au/punjabi ते वाधू जानकारी लवो। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कैनबरा द्वारा अधिकारित।
6: डकैत तो साडे सारिया दे अंदर होंदा है, मौका मिलदा है जो हाथ लगदा है ओह लुट लैंदा है।
7: सिर्फ फिल्मी नहीं, ए है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
6: जदों एक जोकर तख्त ते बैंदा है तां ओह राजा नहीं बनदा, ओह पूरे राज नूं सर्कस मना लैंदा है।
7: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार 7 अगस्त तों तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
0: ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
8: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
0: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
9: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਾ ਜਾਓ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਸਿੱਧੇ ਆਓ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ 186, 180, 492, 492-491, ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ PR ਤੱਕ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਾਲ 02-9063-1618। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ।

0: कृष्णा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवी डिजाइन सिल्वर आई

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: अच्छा सुनना एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: और क्यों एक मूड ते आके मैनूं लगदा है कि तेरी होंद नूं बयानण लई जिवें हमेशा ही कोई कसर बाकी रह जांदी है। मैं तैनूं दुनिया दे नज़ारियां नाल मेल मेल के वेखण दी गलती कर बैठा, पर तू तां अपने आप विच मौलिक अलहदा ते कुदरत दी शाना दी सिरजना है।
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 1674.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साला तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: जब चाहे

ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम। क्लियर है विजन मेरी, आई डोंट नीड नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम। दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

हाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।
1: मेरी हाय हाय कोली मारे अखियों से हाय हाय कोली।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Richard Chanda and you're hearing me on Radio Hanji 1674 AM.

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जीव सावै ताकी महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक कुन संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभ सिमरत काछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन आंदन जागै
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ कै सिमरन सार कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग
1: प्रभ कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी
0: प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभ कै सिमरन तिसना बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभ कै सिमरन नाहीं जम तरसा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरै सी धनवंते प्रभ को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभ को सिमरै सी जन परवान प्रभ को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभ को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभ को सिमरै से मुख सुहावै प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभ को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभ कै सिमरन कारज पूरै प्रभ कै सिमरन कबू न जूरै
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जन को रूप मैया नानक तिन जन सरनी पया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ एक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जमदल है तह केवल नाम संग तेरा चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख बनेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: ये मार्ग हो जात गीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइए नानक गुरमुख परमगत पाइए
1: छूटत नाही को लखबाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्मै मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप होवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साध कै संग
0: जिह मार के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप प्रोग्राम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै
1: भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कर संत दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेकै
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जो हर नाम जपत कछ नाहि बिजोग
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगट नि छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवसै संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमृत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਬੋਰਦਾਨ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਸ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਭਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਝੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਊਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰ ਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿੰਤਿ ਨੀ ਮਨ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸ ਸੰਗ ਕੋ ਪਵ ਦਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀ

0: संग दुर्मत मल हिरिया।
1: सगल उदम में उदम भाला हर का नाम जप जी सदा।
0: सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी।
1: सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जी घट बसै हर नाम।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ तीन श्लोक।
1: निर्गुण यार ए आनिया सो प्राप्त सदा संभाल। जिनकी आतिश्चित रख नानक निभि नाल। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: मैया की गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी।
1: जिंतु साठ सवार सिगारिया गर्भ अगन मह जिने उबारिया।
0: बार बस्ता तुझे प्यारा दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।
1: बिरध पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन।
0: एहो निर्गुण गुण कुछु न बूझे बख्श देहो तो नानक सीजै।
1: जय प्रसाद धार ऊपर सुख बस है सुत परात मीत बनता संघस है।
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला।
1: जय प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा।
0: दीने हस्त पाव कर नेत्रसना तिसे त्याग अवर संगरचना।
1: ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे।
0: आद अन जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार।
1: जाकी सेवा नम निध पावे तासो मूड़ा मन हिलावे।
0: जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे।
1: जाकी टहल पावे दरगह मान तिसह बसारे मुग्ध अजान।
0: सदा सदा भूलन हार नानक राखन हार अपार।
1: रतन त्या कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै।
0: जो छना सुअस्त्र कर माने जो होवन सो दूर पराने।
1: छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग सहाई तिस पर हारे।
0: चंदन लेप उधारे तोए गर्त पीर प्रसम संग होए।
1: अंधकूप में पतत विकराल नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल।
0: दूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात।
1: बाहर भेख अंतर मल माया छप सनाहे कच करे छपाया।
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लो स्वान।
1: अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाह।
0: जाके अंतर बसे प्रभा अपना तेजन सहज समा।
1: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहो उड़न बिहावे।
0: कहा बुजात बुजै डोरा निष्किय तो समझे भोरा।
1: कहा विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग।
0: कहा पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन।
1: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै।
0: संग सहाय सुवे न चीत जो बह राई ता सो प्रीत।
1: बलुआ के ग्रह भीतर वसै आनंद केल माया रंग रसै।
0: दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत।
1: बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह।
0: यह जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो आपन कर कर्म।
1: ठूठा कर तुम पहर दास जियो पिंड सब तेरी रास।
0: मात पिता हम भार तेरे तुमरी कृपा मैं सुगनेरे।
1: कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो स्वाग्याकारी।
1: तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ चार श्लोक।
1: दीन हार प्रभ छोड़ कह लागे आन सुआए। नानक कहू नसी जई बिना वै पत जाए। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण भी खोट गवावे।
1: एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कहो कहां करे।
0: जिस ठाकर सो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा।
1: जाके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा।
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया।
1: अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास।
0: अपनी अमान कछ बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे।
1: अपनी प्रति तापी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे।
0: जिसकी बस सागे राखे पप की आज्ञा माने माथे।
1: उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल।
0: नानक पांत माया के हे सर पर होवत जान अने।
1: बिरकी छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे।
0: जो दिसै सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार।
1: बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताको हाथ नावे केहे।
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाए।
1: मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया।
0: मिथ्या राजु मंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल।
1: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता।
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान।
1: अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण।
0: मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दरुक हिरे।
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद।
0: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा।
0: बिन मुझे मिथ्या सब पै सफल दे नानक हर हर नाम लै।
1: व्यर्थी साक्त की आर जा साच बिना कह होवत सूचा।
0: बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध।
1: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए।
0: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम जो कर प्रते निरार दाम।
1: धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ।
0: रहत वर कछ अवर कमावत मानी पीत मुखो गंडलावत।
1: जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहू पीन।
0: और उपदेश है अपना करै आवत जावत जन मैं मरै।
1: जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार।
0: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन चन पराता।
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपह मानै।
0: आपे आप आप करत नवेरा किसै दूर जिनावत किसै बुझावत नेरा।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old G Long Road Hoppers Crossing। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखें, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ, मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज्ड हैं या नहीं भी डिजीज्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी, उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, तीन तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ या बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो एक बार हमें फिर बता दें।
2: सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें, और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हर एक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है, कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअल।

0: को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है?
1: करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए, है ना। 8 वीक्स का गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको ये निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: आप अगर इस तरह से गुणों पर कॉन्सेंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा?
2: नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज है, ये ऑलरेडी है, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ये है, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज है, वो 7 क्वालिटीज का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज द ओशन ऑफ पीस। तो इफ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो इजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें, उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दें कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहां से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मींस अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माय टाइम इज 15 मिनट्स में कर पाती हूँ, तो 15 मिनट्स आई डू माय मेडिटेशन, व्हेन देन एज अ फॉलो अप टू दैट आई कंटिन्यू विद दिस, नॉट
0: आई शो मे आई कम बैक, यस व्हेन आई कम बैक फिल्ड, यस
2: देन आई डू दिस। तो सपोज अगर मैं रोज 15 मिनट बैठ रही हूँ, लेट्स से, तो वो ही 15 मिनट करूं और वो गुण पर चिंतन करूं, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरूं, उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स, 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर करते हैं, उस हर 1 मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेजर बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हार्ट पर पड़ रहा है। इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे, यस इट विल वर्क डेफिनेटली। 8 वीक्स तो अच्छा लंबा टाइम है, इट विल डेफिनेटली
0: आई थिंक आई कैन एक्चुअली फील कि वो जल्दी ही रिजल्ट्स आने शुरू।
1: बहुत ही अच्छी बात शिवानी बहन ने क्लियर की है। कई लोग ये समझते हैं कि बस शुरू में हम बैठ जाए, बस शांति मिल रही है, मेडिटेशन नहीं करना है, वो नहीं काम करेगा। क्योंकि ये जो सारी टेक्निक है, जब आप डीपर लेवल पर जाते हैं, है ना, आत्मा की भी गहराई में जाते हैं, तब उसकी इफेक्ट होती है। और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे। फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफी हो, लंबा न भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
0: अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए,
1: पहले 15 मिनट तो मेडिटेशन, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन।
2: बेसिकली 15 मिनट में अपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना, सी जैसे गिरीश भाई ने कहा, वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है, लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले। आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स। गोली खाने में कितना टाइम लग रहा, आधा मिनट भी नहीं। तो पहले वो विटामिन लेकर आए, अपने अंदर भरे, then it will hardly take any time to do its work.
0: डॉक्टर पटेल, ये तो बात रही, हमने हार्ट की बात की थी कि किस तरह से अब लोगों के हमारे पास ढेरों मेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को विजुअलाइज कैसे करें, क्या करें, क्योंकि जैसे ही बीमारी की बात आती है, ऑर्गन्स की बात आती है, मेरे सामने वो यू नो नर्व्स का एक या ब्लड सामने आ जाता है, या ऑर्गन जो हमने देखे हुए हैं फोटोग्राफ्स में, बुक्स में, सिर्फ उतना ही आता है। I just can't imagine, visualize नहीं कर पाते हैं।
1: I will give you one example कि जिस पर मैंने खुद काम किया है, इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा। वह है डायबिटीज। कि डायबिटीज आज बहुत बढ़ रहा है, हमने इस पर रिसर्च भी की, छोटा सा बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें। कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहां पर माउंट आबू में रखा, ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी

0: लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे। शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया, जो आमतौर पर चेक नहीं करते हैं। शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया, और फिर पाया कि उनमें से 72% 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया
1: बिना दवाई।
0: नॉर्मल दवाइयां वो ले रहे थे, लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था। दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया, और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर। अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई। और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था वो पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई।
1: अच्छा, इंसुलिन लेवल की?
0: हाँ, ब्लड इंसुलिन। आम व्यक्ति यह सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ? परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपने बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया। उनको जो विजुअलाइजेशन कराते हो, मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है जो विजुअलाइजेशन करना है। सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है या गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है।
1: अच्छा, वो ओवरवर्क्ड है?
0: ओवरवर्क्ड है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज हुआ। तो सबसे पहला तो यह स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है। उनमें पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है। दवाइयां भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है। फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज्यादा शुगर है, जरूरत से ज्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है। शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है। तो ब्लड वेसल से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं।
1: तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते?
0: क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि भी एक द्वार है। वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं, खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है। परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है,
1: क्योंकि इंसुलिन नहीं है।
0: हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है।
1: अच्छा, इंसुलिन
0: तो काम नहीं कर रहा है।
1: इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता है।
0: हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है।
1: ओहो, अच्छा।
0: तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
1: किडनी पर
0: सुन होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है। और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं। ये
1: चारों कैसे करें?
0: हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो। जैसे शिवानी बेन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वो पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और ने पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है।
1: I could visualize actually.
0: ना उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियाज अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प हो गया,
1: रिलैक्स हो गई वो।
0: हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक नाउ पावरफुल रे इज कमिंग, वो आती है पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करती है, और पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करते तो उसमें से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। एक व्यक्ति ने ड्रॉ किया कि भी पेनक्रियाज है वो संतरे जैसा है, मौसम्बी जैसा है, जिसमें जूस है, पेनक्रियास का जूस है, उसने कहा कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है. नो, दिस इज साइकोलॉजिकल बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकता है. दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है, तो क्या होगा?
1: मन करेगा खाने का.
0: हाँ, फिर क्या होगा? करेगा तो
1: हम खा लेंगे.
0: उससे पहले क्या होगा? मुंह में पानी आएगा.
1: अच्छा, मुंह में पानी
0: देखो, वो सोच के वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया. तो ये भी एक ग्रंथि है.
1: अच्छा,
0: सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथि से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है. जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है, लेकिन अलग प्रकार का है. तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है, तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है? सब पेशेंट कहते हैं हाँ हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस कर.
1: हाँ, तब ये एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना.
0: हाँ,
1: पॉसिबल.
0: और फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले, जैसे ही खाने की डिश आ गई, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहां टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है, डिनर लेना है, पहले 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ. देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपन्स.
1: अच्छा, उतना ही रिलीज होगा.
0: हाँ,
1: वो तो हम थायराइड को भी तो कर सकते.
0: हर हर और
1: उतना
0: कर सकते.
1: जितना चाहिए.
0: नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया, आपको जरूरत नहीं है, तो भी वो रिलीज करेगा. पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था, परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया. कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहां एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे. सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे, तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेत था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है. तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ, उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए.
1: अच्छा,
0: भले एक मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया.
1: इट इज एक्चुअली वर्किंग.
0: मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है, तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है.
1: और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो लेवल
0: है ही. हाँ, वो थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है. तो ये सेकेंड लेवल हुआ. फिर अभी थर्ड है कि ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी.
1: अब क्योंकि खाना खा लिया, उसके बाद का विजुअलाइजेशन
0: कि आपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है. तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए. जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए, तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई. उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूं. यह सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, यह सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है. अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए.
1: ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया.
0: हाँ,
1: वो वाइट वाइट
0: स्क्वायर से वो
1: नहीं कर पा रहे. और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता.
0: बना के बताते हैं प्रैक्टिकल. जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है. वह दूसरा एक कहते हैं कि आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो, 250 लिखा है सारे बॉडी में, 250 लिखा हुआ है, ब्लड में उतने सारे स्क्वायर्स है. अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए और कम हुआ. हाँ, अभी 150 हो गई. तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहिए कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए. तो रियली ये क्रिएट करो, बस 150 लिखा है और सचमुच हो गया.
1: ब्लड
0: में आत्मा में वो शक्ति है कि वो प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है.
1: डज इट रिक्वायर क्वाइट लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन?
0: रादर देन कॉन्सेंट्रेशन, नो, यू नीड मोर ऑफ मेडिटेशन. है ना, रिलैक्सेशन की जरूरत है. जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ही इफेक्ट अच्छी होगी.
2: आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज्यादा अच्छी दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अभी तक हम डायबिटीज सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन, मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है। अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं। इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट, नाउ आई एम हीलिंग माई ओन बॉडी। सो इफ आई गेट डिटैच्ड, लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है। इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं।
1: वो आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली यू नो कुछ को, अच्छा दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती।
2: एग्जैक्टली, क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड, हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते। हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए, अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माई माइंड विल डू इट। सी इफ माई माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माई माइंड कैन हील द थिंग। अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना। इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वॉज नॉट अवेयर, अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट, इट विल डेफिनेटली वर्क। लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते। नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी, then the power of the thought will not work. Power of the mind to work, फिर वो thought powerful, positive and concentrated होगा, उसमें कोई
1: conflict नहीं होगा,
2: dilution भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक thought है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा thought है office में तो आज ये काम किया नहीं, then तो क्या एक thought से मैं positive emotion create कर रही हूँ, दूसरे thought से मैं stress create कर रही हूँ, तो I'll be opening and closing the door actually, so it won't work properly. It has to be very focused, channelized thoughts. इसलिए meditation का जो अभ्यास regular रीति से करेंगे, फिर उनके लिए ये करना it's just an extension of what you are already doing. So become very simple then.
1: Actually,
0: और एक aspect आपको बताता हूँ जो diabetes में है, कि भी अधिकतर जो type 2 diabetes है लोगों को, कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है, type 2 diabetes में insulin तो होता है, अधिक भी होता है, जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है, परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंग लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे।
1: अच्छा, जैसे, तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी
0: काम नहीं कर रहा। तो अगर नहीं, अगर ताले को जंग लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंग खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंक लगा है, वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है, टेंशन, ग्रीड, ये सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे, और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने ये कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूं कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहां पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है, और मेरा जो सारा जंक है उसको खींच लेता है, सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा
1: हो गया,
0: ऑरा एकदम क्लियर हो गया, अब वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई।
1: तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही
0: कम, हाँ, फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है।
1: इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशन देखें शिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं, हर ऑर्गन पे काम,
2: पेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो पाएगा।
1: पेन के लिए कैसे कर सकते हैं?
0: पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन में दो बातें हैं, एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और दूसरे जो नर्व्स है उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रहे हैं, उसके कारण भी फिर अल्टीमेटली दर्द हो रहा है। तो दोनों प्रकार के विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। एक तो मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मेडिटेशन की स्टेज में चला गया और बाबा की किरणें मिल रही है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है। मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है, उसको मैंने रिलीज कर दिया।
1: हाँ,
0: या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया।
2: आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। I've personally seen the dentist says आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास, वी वर क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ पेन, यू नो, अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा के ये दोनों जो फैकल्टीज हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हार्मनी में काम करती है कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हार्मनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट एंटैंगल्ड इन द पेन, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ पेन, जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट, क्रिएट दिस विजुअलाइजेशन, इट वर्क्स।
0: और एक बात ये भी है कि जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जा रहे हैं, ये भी विजुअलाइज करोगे, जो फास्ट इम्पल्सिस जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सिस भी शांत हुए, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। दिस ऑल्सो कैन वर्क। आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे, आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है, और करीब 25 इयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का अभी जरूरत क्या, एक तो बताता हूं पहले, उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी करिए उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे, अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है।
1: अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन रहेगी,
0: मेंटेन रहेगी, वो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा, दूसरा ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, एक केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है, पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहां पर जाकर के चिपक जाता है, वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह से हाफ मिलीमीटर है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है और कार्टिलेज अच्छा हो गया तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया।
2: राइट, इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। एक्चुअली वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। इसी अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन, घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी, तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रही हूँ सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे हर जगह, जहाँ फायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए।
1: जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोले और कहे और सोचे,
2: सोचकर सोचे, पहले ध्यान से सोचे।
1: वेरी ट्रू शिवानी, डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति। मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पता भी है तो सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में है, आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन, वाई डोंट वी सर्च फॉर दैट। कि कौन है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन से वो फीलिंग्स हैं और कौन सा वो विजुअलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीजेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया, अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें। इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स जरूर आते हैं। आपके अनुभव आपकी शक्ति बनेंगे और आपको और आगे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: चेती आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
5: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: बाबू मेरा गाना चला दो। सत श्री अकाल, बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: यो हाँ जी 1674।
1: आ जा प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील करा से

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
2: हुण थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यो हाँ जी 1674
1: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा The smart choice.
3: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
4: और जो हुकम मेरी सरकार
3: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
4: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच

0: रेडियो हांजी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। मैं गौतम कपिल, प्रोग्राम दी डीप टॉक शो लैके एक नवे एपीसोड दे विच होए हां हाजर। धन्नवाद तुहाडा इस प्रोग्राम नू सराहन दे लई, प्यार देण दे लई। साइंस दे नाल जुड़ियां होईयां अलग अलग कथावां कहानियां हुण तक तुहानू सुनाईयां कहानियां, इस करके कह रहे क्योंकि जदों अपनी भाषा च सुनदे हां तां इह लगदा है कि किसे कथानक वर्गा है, किसे स्टोरी वर्गी इह गल हैगी। नहीं तां साइंस कई वार हुण तक साडे सिर दे उपरों दी लंघदी रही हैगी है। भूमिका दे विच ज़्यादा कुछ ना दस के कि हुण तक की कुछ किया हैगा, तुसी साडे पॉडकास्ट तो जाके सुनो, पता चलेगा जे पहली बार सुन रहे हैगे डीप शो नू ते किन्ना डीप हैगा। और इस नू इस डीप शो दे विच डूंघियां गल्लां करदे हैगे ने डॉक्टर संदीप कौर जी, साढ़े नाल सब तो पहला फोन लाइन दे उत्ते मौजूद है, वेलकम करदे हां। ते फिर अज दे प्रोग्राम दा वी तुहानू दसदे हां कि की कुछ होण जा रिहा। संदीप जी सत श्री अकाल जी। जी आयां नू
1: सत श्री अकाल जी, थैंक यू। किवें तुसी?
0: हां हां जी बहुत वधिया, तुसी सुनाओ, सेहत ठीक ठाक? हां
1: जी हां जी बिलकुल ठीक ठाक।
0: चलो गुड गुड। फिलोसफीज की गल करते करते हूँ अजक बड़ा काफ़ी कुछ असं फिलोसफर्स पढ़न लग पे हैं, मैं तो घट्टो घट तो पर निकलना बड़ा मुश्किल है फिलोसफीज के। सो असी वो तो नाल एपीसोड हूँ करे ही है, एक थोड़ा जा वखरा जा रूप भी दिता है। एक ये सीरीज साड़ी चलती रहती है संदीप जी, मैं स्रोतियां दस दाँ कि उन्होंने लग रहा होगा कि हूँ असं उधर तुर पे हैं, ये सीरीज चल रही होंगी है। एक बार असी स्पेस के उत्ते सीरीज चलाती थी, मरीन लाइफ के नाल जुड़ी हुई आ, अलग अलग जड़िया सगिया वो जुड़िया हुई, समुद्री जीवन के नाल जुड़िया हुई, वोदिया गल्लां करन लग पे सी, धरती के नाल जुड़िया कितिया पोल्यूशन एनवायरमेंट के नाल जुड़िया हुई गल्लां कितिया वो सीरीज सी। हुण एक फिलोसफी वाली सीरीज हैगी है, सुकरात तो रह के अरिस्टोटल तक बहुत सारे फिलोसफर्स दियाँ सिर्फ चुनिंदा फिलोसफीज जिहड़ियां साइंस दे नाल किवें रैलेवेंट हैगियां ने, या वो फिलोसफीज जिन्हां दी रैलेवेंस ही साइंस दे नाल है, और साइंस दी भी वो कुछ आस्पैक्ट्स जिन्हां दे उत्ते आपां गल करदे हां सुणदे हां आम गल्लां बातों दे विच, पर उहदे लॉजिक दे पिछे नहीं जाते, जिवें पिछली बार सुपनिया दी। और जद तो संदीप जी ने मैनूं ल्यूसिड ड्रीमिंग बारे दस्सिया, मैं तां हुण अपने आप नूं सोचन लग पे हैं कि किस तरीके दे नाल अपने नाइटमेयर्स नूं ड्रीम्स दे विच बदल लिया जावे। खैर तुसी वह एपीसोड जरूर सुनिया होगा, नहीं सुनिया तां पॉडकास्ट ते जाके सुनियो। पर अज संदीप जी मैडीटेशन की गल करनी है, मैं तां दूर दूर तक नहीं सी लगता कि इहदा इहदे पिछे कोई लॉजिक भी हुंदा, पर अज तुसी फिर खोल दिओ पर्दे साडी अखां तों चक दिओ पर्दे जिन्ने भी हैगे ने।
1: हाँ जी बिल्कुल, अज असी मैडीटेशन की गल करांगे क्योंकि यह भी एक क्योंकि सानू इदा जिदा तुसी कहा कि आप थोड़ा इहदे वल घट ध्यान दिंदे आ क्योंकि बहुत टाइम तो चलती आती है ना, साडे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन च भी इहदा जिहड़ा मैनशन हैगा आ, तो आप थोड़ा जा मतलब साडी सोसायटी इदा नहीं बन चुकी है कि सानू इदा शायद दिखाया जाता है कि जिहड़ी आ इह पुरानियां चीजा है उहदा साइंस कि साइंस उन्हां नू अपोज कर दी आ जैवें दीआं कोई चीजा, पर हालांकि इदा दा नहीं हुंदा हैगा। साइंस च इह है कि क्योंकि मैं अजकल बहुत वार सुणदी आं लोकां नू ना कि कहिंदे आ कि साडे देखो मतलब काफ़ी टाइम साडे तां बुक्स च चीज़ां पहलां ही दसियां सी, साइंस हुण दस रही है इन्हां चीज़ां बारे, बहुत सारी इदां दी चीज़ां पर रील्स देखदे आ जां है ना देखदे आ, उहदा थोड़ा जिहा मतलब इह मैनू लगदा है कि उहदा असी एक कोई ऑपोजिट चीज नहीं हैगी, एको ही जिहड़ी चीज हैगी आ, जिहड़ियां चीजां साडे जिहड़ियां रिलीजनस दे विच आ साडियां बुक्स होली बुक्स दे विच जिहड़ियां पहलां लिखियां होईयां सी उहनां नूं साइंस दा मतलब हुंदा है कि तुसी उहनां चीजां नूं प्रूव कर रहे हो जां तुसी एक एक्सपैरिमेंट करके उहनूं देख रहे हैं ना। जदों कोई साइंटिफिक वे नाल आपां चीज करदे हां तो उहदा मतलब यह है कि जे तुसी एक चीज जिहड़ा एक एक्सपैरिमेंट कीता उहदा रिजल्ट जिहड़ा तुहानूं एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलिया उहनूं तुसी किसी होर वे नाल भी कर लो, तुहानूं उही पर्टिकुलर रिजल्ट जिहड़ा मिल चाहिदा है ना, फिर ही तुसी कहोगे कि एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। सो मेडिटेशन दी जदों से गल करदे हां कि क्योंकि बहुत साल पुरानी इहदी हिस्ट्री दी भी आपां गल करांगे, बहुत हजारां साल पहला जिहड़ी इह शुरू होई सी, और इह सीगा कि उस टाइम दे उत्ते लोक जिहड़ा आ थोड़ा रिलीजियस परस्पेक्टिव तो ज्यादा देखदे सीगे इहनूं है ना, कि अपनी एनलाइटमेंट तुसी कह सकदे बुद्धिस्ट जिहड़े उह कहिंदे कि एनलाइटमेंट लई जां गॉड नूं मिलन दे लई उह जिहड़ा ज्यादा करदे सीगे। अज दी जिहड़ी सोसाइटी हैगी अज असी मैडिटेशन नूं इस तरह लैंदे आ कि असी अपने आप नूं जिहड़ा लब्भण दे लई जां अपने आप नूं मिलन दे लई मैडिटेशन करदे आ। मेडिटेशन का मतलब जिहड़ा एक फोकस बनाना हुंदा है तुहानूं चीज़ां उत्ते है ना, इसलिए जिहड़ी असी अज मैडिटेशन की गल करनी हैगी है।
0: ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਓਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੋਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਰਟ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈ ਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਪਬਲਿਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਟਰਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੋਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: लादे फिर।
6: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
7: हां जी रेडियो।
8: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.
6: हाँ जी हाँ जी।